सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 20, तदनुसार 11 अगस्त ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38

समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता।

किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास के स्वर में ये रचना। आइए अब सुनते हैं अगली रचना अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में ये भजन। आइए अब सुनते हैं ये रचना।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोता हूँ आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे

श्रोताओं, दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। दिन के 3:00 सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 4:00 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। शाम 4:02 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 5:00 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध किए गए फिल्मी गाने। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6:00 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, शाम 6:02 पर सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। शाम 6:30 पर सुनिएगा संथाली कार्यक्रम, इसमें आनंद लीजिएगा लंगड़े लोकगीत से सोना मुर्मू और साथियों के स्वरों में। भेंटवार्ता का आज का विषय होगा KCC ऋण की सुविधा। भेंटवार्ताकार होंगे फुदन मुर्मू, उनसे बातें कर रहे होंगे बड़ा हंसता। साथ ही आप आनंद ले सकेंगे दोंग लोकगीत का धनई टूडू और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा हमारे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। श्रोताओं, शाम 7:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा संसद समीक्षा का प्रसारण। शाम 8:15 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि 10:00 सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में संगीत रचनाओं का।

श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में संगीत रचनाओं का, और भाई सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में संगीत रचनाओं का। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को मेरा प्यार भरा जोहार। तो श्रोताओं, ये शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है उत्सव।

श्रोताओं, जोहार। चायबासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था उत्सव। जी हाँ, और अब आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तुमसा, माफ़ कीजिएगा, तुमसे अच्छा कौन है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब श्रोताओं, आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सीता और गीता, इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाश

0: बड़ी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब कार्यक्रम में अगला गीत, आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

दिल ही तो है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम, जी हाँ, दिल ही तो है, ये था फिल्म का नाम। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सिंदूर।

श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ कि आपको गाने पसंद आ रहे होंगे। और अब आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

श्रोताओं, यादों की बारात फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मुनीम जी।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

और श्रोताओं, आइए बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत हमारा मुल्क आज़ाद है। श्रोताओं, भारतीय सेना के हमारे वीर सैनिक हर वक्त देश की सेवा में लगे हुए हैं और हर प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्रोताओं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि देश के लिए देश के सैनिकों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और सदैव हमारे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए।

श्रोताओं, देशभक्ति की भावना से भरा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम था लीडर। और अब कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है वक्त।

आशा भोसले की आवाज़ में। श्रोताओं, ये था फिल्म वक्त का गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो अभी रजिस्टर कर बैठे क्यों हो अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
6: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
7: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
8: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
4: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
9: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
4: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
10: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
11: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
12: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
11: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू रिमेन फ्री फॉर कंस्यूमर्स। Government notifies 11 more international ports, enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand bond today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
13: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
12: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
14: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and 9 land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travelers. Around 95% of e-visa applications are processed in less than 72 hours. Introduced in 2014 for nationals of 43 countries, the e-visa facility has now been extended to citizens of 172 countries. It is currently available under 17 subcategories, including tourist, business, medical, student, transit, cruise and mountaineering visas. The ministry said India now issues roughly 78% of its visas electronically. Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
12: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing.
15: Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. More from our correspondent.
16: The assembly Girao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Student protest leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 9 days, was admitted to Ranchi Sadar Hospital after his health deteriorated during the assembly protest. Doctors are monitoring his condition and have placed him on oxygen support. The BJP has called for a statewide bans today, alleging excessive use of force against protesting students and reiterating its demand for a CBI inquiry into the alleged examination irregularities. Ranchi Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri appealed to people to observe today's band peacefully and warned that appropriate action would be taken against anyone attempting to disturb law and order or incite violence. The administration has increased security arrangements at key locations in Ranchi and appealed to all sections of society to maintain peace and cooperate with the police and district administration. Mehvish Rahman, Akashwani News.
15: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 132 people were killed following a powerful 7.4 magnitude earthquake hits Western Colombia yesterday. More than 570 others have been injured. According to U.S. Geological Survey, the epicenter of the quake was near San Jose del Palmar in the Choco region, about 400 kilometers west of the capital, Bogota. The quake damaged hundreds of buildings and trapped several people under debris. Rescue teams and local residents searched through the rubble for survivors. Colombian President Abelardo Despriella has declared an emergency to speed up funding for relief and recovery operations. The tremors were also felt in neighboring Ecuador and Panama, though no major damage was reported there. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for Himachal Pradesh and East Rajasthan for heavy to very heavy rainfall today. According to IMD, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Delhi will experience heavy rainfall at isolated places today. Rain has been occurring intermittently across most parts of Himachal Pradesh since last night. The Meteorological Centre Shimla has issued a warning of heavy rainfall in mainly 9 districts of the state during the next 24 hours. A report.
17: Continuous rainfall across Himachal Pradesh has affected normal life. As many as 106 roads remain blocked due

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा और आजसू का आज झारखंड बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का दिया भरोसा, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। लातेहार से पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, दलमा के जंगलों से हथियारों का जखीरा बरामद और आज चाईबासा में होगा माओवादियों का आत्मसमर्पण। रांची मौसम केंद्र ने आज राजधानी रांची सहित राज्य के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की जताई आशंका, अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित डोरंड कप फुटबॉल में एससी दिल्ली की धमाकेदार जीत, भारतीय वायुसेना को 7-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर कल राजधानी रांची में करीब 10 घंटे तक छात्रों का जोरदार आंदोलन चला। विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज भाजपा का राज्यव्यापी बंद जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राजधानी रांची की सड़कें कल शाम उस वक्त अखाड़ा बन गईं जब विधानसभा घेराव के बाद छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। दिन भर विधानसभा के बाहर

0: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा। शाम को प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लौट रहे छात्रों की पुलिस से भिड़ंत हुई। कथित पत्थरबाजी और नारेबाजी के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। भगदड़ और लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की सूचना है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की भी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रशासन वीडियो फुटेज खंगाल रहा है ताकि प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
1: जितने भी छात्र इसमें आंदोलनरत थे उन्होंने अपना संयमता का परिचय दिया। पुलिस भी विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना न हो उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना कम से कम बल का प्रयोग किया और असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उकसाने को प्रयास किया। अनुरोध है कि उनको चिन्हित करें और पुलिस भी उनको चिन्हित करने की आगे की कार्रवाई करेगी।
0: घटना के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 8 बजे से प्रभावी रहेगा। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ सावन के मद्देनजर देवघर जाने वाले कांवरियों को बंद से मुक्त रखा गया है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो आज रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में धरने पर बैठेंगे।
2: भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो जो अन्य सेवाएं हैं सारी सेवाएं बंदी से प्रभावित नहीं होंगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ वैसे लोगों को सहयोग करने का काम करें।
0: इधर चौतरफा घिरी हेमंत सोरेन सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीतिक साजिशों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अब नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद छात्रों का आंदोलन किस दिशा में जाता है और आज का झारखंड बंद सरकार के लिए क्या नई चुनौती लेकर आता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
3: इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों के वास्तविक मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है और अपने फायदे के लिए युवाओं के आंदोलन को भटकाने की कोशिश में जुटी है।
4: भाजपा की क्या भूमिका है, किस तरीके से छात्रों के मुद्दों को विषय से भटकाने के लिए उसका राजनीतिकरण किया गया है और राजनीति की वजह से छात्रों का जो मेन मुद्दा है या उनके कॉज है वो किसी तरह से प्रभावित न हो, राज्य सरकार की यही मंशा है और छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोगों के समाधान के लिए सरकार तैयार है।
3: झारखंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत पलामू में राधा कृष्ण किशोर और दीपक बिरवा जबकि जामताड़ा में इरफान अंसारी तिरंगा फहराएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड।

0: वन्य श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने मुख्य प्रवेश द्वार और लिटिगेंट शेड की आधारशिला रखी। साथ ही पार्किंग शेड और कोर्ट रूम में माइक साउंड सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए अदालतों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है।
2: लिटिगेंट सिटिंग का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद लॉयर्स का पार्किंग शेड ये भी इनॉग्रेट हुआ। साथ में हमारे यहाँ माइक्रोफोन लगाया गया जिससे आर्गुमेंट में क्लियरिटी रहेगा। उसके बाद मेन गेट का सेंटर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तो उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। तो ये सारे समझिए कि अल्टीमेटली लिटिगेंट के हेल्प के लिए हुआ है।
1: राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी है। लातेहार पुलिस ने कस्तूरबा विद्यालय के संवेदक से लेवी वसूलने की हिंसक योजना को नाकाम करते हुए पीएलएफआई नक्सली लालदेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरायकेला के सिकंबरा और दलमा जंगलों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, राइफलें और आईईडी बरामद की गई हैं। इस बीच सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण आज चाईबासा पुलिस केंद्र में एक महिला उग्रवादी सहित कई अन्य माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने आज राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए 135वें डूरंट कप फुटबॉल मुकाबले में एससी दिल्ली ने भारतीय वायुसेना को 7-1 से हरा दिया है। इस शानदार जीत के साथ एससी दिल्ली ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और 9 अंकों के साथ ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विधानसभा पर छात्र सैलाब, रण क्षेत्र बनी रांची। प्रभात खबर की सुर्खी है, परीक्षा घोटाले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष खियांगते को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम ने की छात्रों से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च की सराहना, कहा उनकी आवाज का सम्मान करेगी सरकार। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में

आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए मनोरंजन करते हैं कुरमाली लोकगीत से। कलाकार हैं संतोष महतो और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे हैं कुर्माली लोकगीतों का कलाकार है संतोष महतो और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे कुरमाली लोक गीतों का। कलाकार थे संतोष महतो और साथी। श्रोता, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदयपाल। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए चर्चा करते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले, मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के बारे में, जिनकी आज शहादत दिवस है। श्रोताओं, खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में त्रैलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। सन 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश के मुक्ति आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस जी ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस जी राजनीतिक गतिविधियों में स्कूल के दिनों से ही भाग लेने लगे थे। उन दिनों अंग्रेजों से छोटे छोटे हिंदुस्तानी स्कूली बच्चे भी नफरत किया करते थे। वे जलसे जुलूसों में शामिल होते थे तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उनको गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी भारत माता को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और सिर पर कफन बांधकर जंग ए आज़ादी में कूद पड़े। श्रोताओं, वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए और वंदे मातरम पंफलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्रोताओं, पुलिस ने उस वक्त 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तेहार बांटते हुए खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया, लेकिन वे मजबूत थे। पुलिस की बोस जी ने, यानी कि खुदीराम बोस जी ने पिटाई की और उसके शिकंजे से भाग निकलने में सफल रहे। 16 मई सन 1906 ईस्वी को एक बार फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी आयु कम होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। 6

दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में भी वे शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। श्रोताओं, उन दिनों कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित और दंडित करने के लिए बहुत बदनाम था। क्रांतिकारियों ने उसे समाप्त करने का एक काम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा। सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति लोगों के आक्रोश को भांप कर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया, पर दोनों क्रांतिकारी भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से बाहर निकलते ही किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्य से उस समान आकार प्रकार की बग्घी में दो यूरोपियन महिलाएं बैठी थी जो पिंगले कैनेडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी थी। वे मारी गईं। क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारने में सफलता समझकर वे घटनास्थल से भाग निकले। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक चरण में कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध आवाज़ उठाई। खुदीराम बोस भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में संभवतया सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो भारत माँ के सपूत कहे जा सकते हैं। बंगाल के विभाजन के बाद दुखी होकर खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से एक मशाल जलाई। उन्होंने ब्रिटिश राज के बीच डर फैलाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी के वाहन पर बम डाल दिया था। श्रोताओं, कलकत्ता में उन दिनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, वे बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी थे। वे अधिकारी देशभक्तों विशेषकर क्रांतिकारियों को बहुत तंग करते थे। उन पर वह कई तरह के अत्याचार करता था। क्रांतिकारियों ने उसे मार डालने की ठान ली थी। श्रोताओं, खुदीराम बोस और घोष, जी हाँ श्रोताओं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया था, लेकिन खुदीराम बोस और घोष 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पहुंचे। खुदीराम बोस पर पुलिस को इस बम कांड का संदेह हो गया और अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, पर खुदीराम पकड़े गए। उनके मन में तनिक भी भय की भावना नहीं थी। खुदीराम बोस जी को जेल में डाल दिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चला। अपने बयान में स्वीकार किया उन्होंने कि किंग्सफोर्ड को मारने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उसे इस बात पर बहुत अफसोस है हुआ कि निर्दोष कैनेडी तथा उनकी बेटी गलती से मारे गए। श्रोताओं, वो मुकदमा 5 दिनों तक चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें प्राणदंड की सजा सुनाई गई। इतना संगीन मुकदमा केवल 5 दिन में समाप्त हो गया। श्रोताओं, ये बात न्याय के इतिहास में एक मजाक बना रहेगा। 11 अगस्त 1908 को इस वीर क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। श्रोताओं, मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा था। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमर पड़ी थी। इनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और इनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। इनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं।

सकता हूँ। इतिहासकार शिरोल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वे शहीद और अधिक अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाए, स्कूल कॉलेज बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। श्रोताओं, खुदीराम बोस को भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम शहीद माना जाता है। अपनी निर्भीकता और मृत्यु तक को सोत्साह वर्ण करने के लिए वे घर घर में श्रद्धापूर्वक याद किए जाते हैं। तो श्रोताओं, हम अभी जानकारी प्राप्त कर रहे थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के बारे में, और अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, अब ये बात करते हैं डूरंड कप की। जी हाँ श्रोताओं, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरंड कप के नाम से जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार सन 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी। श्रोताओं, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी यानी DFTS और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना और मौजूदा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो दुनिया में पांचवी सबसे पुरानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। वर्तमान में सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान AC हैं। श्रोताओं, सुपर कप द्वारा सफल फेडरेशन कप की शुरुआत के बाद से ये आमंत्रण भागीदारी के साथ केवल एक प्रदर्शनी टूर्नामेंट बन गया, लेकिन साल 2022-23 से ये सभी इंडियन सुपर लीग और आमतौर पर शीर्ष पांच आई लीग क्लबों के साथ भारतीय फुटबॉल सीजन ओपनर के रूप में कार्य करता है। श्रोताओं, टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो सन 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। श्रोताओं, ये पहली बार भारत के सशस्त्र बलों और रियासतों के विभिन्न विभागों और रेजिमेंटों के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से अतिथि आमंत्रितों के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों के कई क्लबों की भागीदारी से सेना में उपस्थिति बनी हुई है। आर्मी ग्रीन 2016 में प्रतियोगिता जीतने वाली नवीनतम आर्मी टीम बन गई। वर्तमान में बेंगलुरु FC डूरंड कप के धारक हैं। श्रोताओं, डूरंड कप से जुड़ी कुछ रोचक बातें आइए समझते हैं। श्रोताओं, यह टूर्नामेंट 1888 में डगशाई शिमला के पास में शुरू हुआ था और इसका नाम ब्रिटिश इंडिया के पूर्व विदेश सचिव सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जिन्हें डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करती है। श्रोताओं, मोहन बागान ने सन 1925 में इतिहास रचा था जब उन्हें टूर्नामेंट में ब्रिटिशर्स के बीच हिस्सा लेने वाली पहली सिविलियन ऑल इंडियन टीम बनने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने रॉयल बर्कशायर रेजिमेंट, यॉर्क लैंकेस्टर रेजिमेंट और एक्सेस रेजिमेंट को हराने के लिए बहादुरी से जो है वे खेले, लेकिन सेमीफाइनल में शेरवुड फॉरेस्ट से हार गए। मोहम्मदन 1940 यानी 1940 में डूरंड कप जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी, जिसने पहली बार इंग्लिश टीमों का दबदबा तोड़ा। उन्होंने फाइनल में रॉयल वॉरशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया। आज़ाद भारत की फुटबॉल टीम के पहले कप्तान तालीमेरेन एओ ने भी मोहन बागान के लिए खेलते हुए सन 1950 के डूरंड कप में हिस्सा लिया था। फाइनल के दौरान एक नाटकीय मोड़ तब आया जब रेगुलर गोलकीपर के घायल होने के बाद उन्होंने दूसरे हाफ में गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। हैदराबाद सिटी पुलिस आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ी सैयद अब्दुल रहीम के मार्गदर्शन में डूरंड कप की पहली

विजेता थी। मोहन बागान पहले रनर अप रहे। श्रोताओं, इस टूर्नामेंट को सन 1958 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी DFTS के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर किया गया था। इसे DFTS के प्रेसिडेंट के तौर पर द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की लीडरशिप में बनाया गया था, जबकि दूसरे चीफ वाइस प्रेसिडेंट थे। सन 2019 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने DFTS के प्रेसिडेंट का पद संभाला। श्रोताओं, आज़ादी के बाद इंडियन आर्म फोर्स की कई टीमों ने कप जीता है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, गोरखा बेग्रेट और इंडियन आर्मी आर्म फोर्स की सबसे सफल टीमें हैं। पेनल्टी शूट आउट 1971 के बाद शुरू हुए। इससे पहले ड्रॉ हुए मैचों में रिप्ले होते थे। मोहन बागान के नारायण स्वामी उलगानाथन ने 1976 में JCT मिल्स के खिलाफ डूरंड कप फाइनल में पहली हैट्रिक बनाई थी। इराक की अल नाफ्ट आज़ादी के बाद डूरंड कप के फाइनल में पहुंचने वाली अकेली विदेशी टीम है। 1996 के एडिशन के फाइनल में वे JCT मिल्स से 1-0 से हार गए थे। श्रोताओं, सिर्फ 16 साल की उम्र में बाईचुंग भूटिया ने 1993 के डूरंड कप में BSF के खिलाफ बाईसाइकिल किक गोल करके अपनी पहचान बनाई, जिससे भारतीय फुटबॉल में उनके 18 साल के राज की शुरुआत हुई। 2002 में 22 साल के सुनील छेत्री, जो दिल्ली के सिटी क्लब के लिए खेल रहे थे, ने डूरंड कप में गोल करके बड़ा ब्रेक पाया, हालांकि उनकी टीम क्वार्टर फाइनल से चूक गई थी। श्रोताओं, डूरंड कप टूर्नामेंट को 2019 में कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां ये तीनों सेवाओं और डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी की ओर से पूर्वी कमान के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। सन 2022 में डूरंड कप पहले राज्य के लिए एक मल्टी सिटी इवेंट बन गया, जिसके आयोजन स्थल 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में फैले हुए थे। इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ ये जुड़ाव 10 जुलाई 2024 को फिर से हुआ, जब 3 आइकॉनिक ट्रॉफियों को जो है उनका अनावरण किया गया और प्रेसिडेंट भवन से उन्हें फ्लैग ऑफ किया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष डूरंड कप हमारे झारखंड के रांची में आयोजित किया गया है। श्रोताओं, जानकारी के बाद अब आइए जानते हैं मशहूर जो है श्रोताओं मशहूर शायर, जो कि प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत, जी हाँ, डॉक्टर राहत इंदौरी जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। श्रोताओं, राहत इंदौरी जी का जन्म मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA किया। तत्पश्चात 1985 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की। राहत इंदौरी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। श्रोताओं, इंदौर की ज़मीन से काशिफ इंदौरी और नूर इंदौरी भी पायदार शायर हुए हैं, लेकिन राहत इंदौरी जैसी शोहरत किसी को नहीं मिली। झंडा चौक दरअसल इंदौर में शायरों का गढ़ माना जाता है। शाम से शुरू होकर देर रात तक शायरों का जमावड़ा वहां लगा रहता है। रानीपुरा स्थित यह चौक सामिश खाने और शेर व शायरी के लिहाज से बड़ा
मरकज़ था।

ये अभी भी बदस्तूर चालू है, लेकिन झंडा चौक का ये दृश्य बदलकर बहुत पीछे दूसरे विश्व युद्ध पर इतिहास में जाकर स्थिर हो जाता है। इस युद्ध के बाद यानी वर्ष 1945 से यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत अस्थिर हो गई थी। भारतीय कपड़ा मिलों में जो उत्पादन होता था वो यूरोप में निर्यात पर ही निर्भर था। यूरोप के खस्ताहाल होने का असर भारतीय मिलों पर होना ही था। इंदौर उस समय कपड़ा मिलों के लिए जाना जाता था। यहाँ भी कई मिलें बंद हो गई और बड़ी संख्या में कामगारों की छटनी हो गई। रिफत उल्लाह ऐसे कामगारों में थे जिनकी नौकरी भी चली गई। मुफलिसी का दौर उनके जीवन में शुरू हो चुका था। वो ऑटो चलाने लगे थे। वर्ष 1950 के पहले दिन 1 जनवरी को उनके यहाँ कामिल यानी राहत इंदौरी जी का जन्म होता है, जिसका बाद में नाम बदलकर राहत कर दिया गया। श्रोताओं, इंदौर में उस दिन यह भी हुआ कि होलकर रियासत ने भारत में विलय होने की सहमति पर दस्तखत किए थे। श्रोताओं, उस समय के राहत नयापुरा स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे और खर्चा पानी के लिए मजदूरी किया करते थे। पैसा उनके परिजनों की ज़रूरत थी और वे कमाने की जुगत में लगे रहते थे। मालवा मिल के पास उन्होंने पेंटिंग की एक दुकान खोल ली और ट्रक के पीछे पेंट करने का जो है काम करने और का जो है श्रोताओं काम करने लगे। मोटरसाइकिल और स्कूटरों के नंबर प्लेट भी वे पेंट करने लगे थे। श्रोताओं, वरिष्ठ चित्रकार अनीस नियाजी के अनुसार वे कहते हैं कि राहत जी के फानी हो जाने के सदमे राहत भाई के फानी हो जाने के सदमे में कुछ कुंद दरवाज़ों को खोल दिया है। इंदौर में नयापुरा नाम की एक बस्ती है। यहाँ अंजार जमात के बहुत आयत है। ये लोग बुनकर हुआ करते थे। श्रोताओं, मुंबई में उनकी जोड़ी अनु मलिक जी के साथ हिट रही थी। उन्होंने श्रोताओं नींद चुराई मेरी, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है जैसे उनके लिखे कई गाने अनु मलिक जी के साथ उन्होंने जो तैयार किए और वो गीत काफ़ी हिट रहे। श्रोताओं, युवा शायर और बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्म लेखक संजय मासूम जी ने एक जगह ये कहा कि राहत इंदौरी साहब का जाना शायरी की एक बेबाक बुलंद आवाज़ का खामोश हो जाना है। श्रोताओं, उनके द्वारा लिखा गया एक गीत आइए सुनते हैं, जो कि हमने लिया है फिल्म सर से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी फिल्म के इस गीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म 1942 लव स्टोरी का ये गीत। आइए अब अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम है वीर जारा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म का नाम है वास्तव।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए अब अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल जले।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म दिल जले का ये गीत है। अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं आप सुन रहे थे दिल का रिश्ता फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और

0: जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया, जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओ, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की

0: हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत की चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों।

0: की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
0: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
0: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
1: मारो
0: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
1: डॉक्टर किचलू को
2: रिहा करो।
1: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
2: कर दिया, कर दिया।
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी थी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
6: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
7: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
8: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
9: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
7: आज के इस अधिवेशन

0: जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
1: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: मैंने सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छे एकम छे,
3: छे एकम छे,
2: छे दुनी बारह,
3: छे दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छे ती अठारह,
3: छे ती अठारह,
2: छे चौक
1: चौक। क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का

0: ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो।
1: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण।
5: 40.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। ये वक्त है कार्यक्रम जोहार रांची का। तो जोहार रांची के एक और नए अंक के साथ मैं ऋतुश्री, जोहार साथियों और रितेश।
6: और मैं हूँ रितेश। जोहार
5: जोहार रितेश। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने से।

और अब बातें जोहार रांची में सुविचार की। तो दोस्तों, कहते हैं कि सकारात्मक सोच से मिलती है सफलता। मनुष्य के जीवन की सच्चाई ये है कि इसमें हमेशा हर कदम पर चुनौतियां खड़ी मिलती हैं। चुनौतियां कभी हमारे सामने होती हैं तो कभी हम उनके सामने। अंतर सिर्फ इस बात का है कि कब हम सकारात्मक होते हैं और कब नकारात्मक। जीवन विद्या के मर्मज्ञों का ये अनुभव है कि हम जब सकारात्मक होते हैं तो हमारी ऊर्जा के समस्त आंतरिक स्रोतों में स्वतः स्पंदन आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत होने लगते हैं और उनमें अंतर्निहित शक्तियों का धीरे धीरे ऊपर आने से हम सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। जीवन की प्रत्येक चुनौती, हर एक संघर्ष हमारी क्षमताओं, संभावनाओं को उभारने निखारने का अवसर होता है, लेकिन इन अवसरों का लाभ व्यक्ति की सकारात्मक प्रवृत्ति से ही संभव हो पाता है। नकारात्मक व्यक्ति चुनौतियां संघर्षों से भयभीत होकर भाग खड़ा होता है, इसलिए उसके व्यक्तित्व को क्षमतावान बनाने वाले अवसरों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं।

जोहारा जी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, अब बातें आज के मौसम की। आज के मौसम के बारे में ऐसा पूर्वानुमान है कि आकाश में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बादलों की आंख में चौली भी जारी रहेगी। छिटपुट बारिश की भी संभावना है और आज थोड़ी गर्मी का भी एहसास होगा। और जब बारिश का महीना है, ये सावन का महीना है, तो इसमें हम बहुत अच्छे से इस महीने को हम महसूस करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और आइए बातें करें आज के इतिहास की। तो 11 अगस्त एक ऐसी तारीख है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शौर्य, साहस और बलिदान की अमिट कहानी लेकर आती है। आज ही के दिन 11 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में 7 युवा शहीद हुए। इनमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और तारापत चौधरी शामिल थे। और ये भी बता दें कि 11 अगस्त 1908 में महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के मामले में फांसी दी गई थी और उस समय ये केवल 18 वर्ष के थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा शहीदों में ये गिने जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में युवा अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस ने देश की आजादी को अपना सबसे बड़ा सपना बना लिया था और मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कहा जाता है कि फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि देशभक्ति का तेज था। उनका बलिदान देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया और 11 अगस्त आज के दिन हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और उन वीर शहीदों को शत शत नमन करते हैं।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
6: दोस्तों, कहते हैं कि सावन का महीना बहुत सुंदर होता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और बहुत मस्त और मोहक महीना ये होता है। लेकिन इस महीने में हर तरफ बारिश और उससे उपजे कई चिंताजनक बीमारियां भी जन्म लेती हैं, तो इसमें हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए कि हम बीमार नहीं पड़े और इस मौसम का भरपूर आनंद लें। तो चलिए आज हम बात करते हैं नीम के पेड़ की। हम इससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी बातों को करेंगे। तो आयुर्वेद में नीम का क्या उपयोग है, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी पेड़ माना गया है। इसका स्वाद तो कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे अनेक और बहुत ही प्रभावशाली हैं। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। नीम का पेड़ भारत में सबसे प्रिय और बहुमुखी देशी पेड़ों में से एक है। अपने औषधीय गुणों के लिए ये जाना जाने वाला नीम के पेड़ के हर हिस्से का इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा

समय किया जाता रहा है। इसकी पत्तियां, छाल और बीज जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटीफंगल लाभ प्रदान करते हैं। नीम के पेड़ के लगभग सभी हिस्से उपयोगी हैं और इसके कई औषधीय और कॉस्मेटिक उपयोग इसके जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुणों पर आधारित हैं। नीम का इस्तेमाल आमतौर पर रूसी के इलाज के लिए शैम्पू में, मुहासे, सोरासिस और एथलीट फूट जैसी त्वचा की स्थितियों के लिए साबुन या क्रीम में किया जाता है। ये कुछ टूथपेस्ट और माउथवॉश में भी एक घटक के रूप में काम करता है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, और युवा टहनियों का उपयोग सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे टूथब्रश के रूप में किया जाता है, जो बहुत ही फायदेमंद होता है। नीम के पत्तों का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से मधुमेह के पारंपरिक उपचार के रूप में विकसित किया जाता है, और कुछ नैदानिक साक्ष्य ये भी बताते हैं कि ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नीम का तेल और नीम की छाल और पत्तियां गर्भवती महिलाओं के लिए असुरक्षित है और ये गर्भपात का कारण बन सकती है। बीजों से निकाले गए तेल का उपयोग सीधे तौर पर कीट और घुन विकर्षक के रूप में किया जा सकता है। नीम का तेल संपर्क में आने पर नरम शरीर वाले कीटों को मार सकता है और कीटों की प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। फफूंदनाशक नीम के तेल का उपयोग जंग, काले धब्बे, फफूंदी, पपड़ी, एंथ्रेक्नोज और ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो नीम का प्रयोग और उपयोग हम सभी को अच्छे से करना चाहिए।

और दोस्तों, अब हम चलते हैं घूमने फिरने सैर सपाटे की ओर। तो कहते हैं कि मानसून में अमरकंटक जो है ना, वो खिल उठता है। मांडू, पंचमढ़ी, सांची, खजुराहो के अलावा मध्य प्रदेश में घूमने की और भी कई जगहें हैं जहां आप मानसून के दौरान घूमने जा सकते हैं। ऐसे इलाके बारिश के मौसम में एक जादुई बदलाव से गुजरते हैं। घने जंगलों से घिरा एक ऐसा ही शहर है अमरकंटक, जो मानसून में हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। घुमावदार पहाड़ियां, घने जंगल और गिरते झरने न सिर्फ एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं, बल्कि विश्राम और कायाकल्प के लिए एक शांत वातावरण भी पर्यटकों को देते हैं। इसलिए यदि आप प्रकृति की सुंदरता के बीच एक शांतिपूर्ण अनुभव की तलाश में हैं, तो मानसून में अमरकंटक जरूर जाएं।

और ये भी बता दें कि यहाँ हम कैसे जाएं और कहाँ रुके। अगर आप हवाई जहाज से अमरकंटक जाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले बिलासपुर पहुँचना होगा, वहीं से ट्रेन लेना होगा। तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन करौंजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पहुँचकर आप टैक्सी ले सकते हैं। अमरकंटक पहुँचने के लिए जहाँ तक यहाँ रुकने की बात है, तो आपके बजट में यहाँ बहुत तरह के होटल और होम स्टे मिल जाएंगे।

और साथियों, आज की ही जोहार रांची अब यहीं संपन्न होती है। ऋतुश्री को दें इजाजत। जोहार, नमस्कार।

0: और आइए अब सुनते हैं झारखंड आदिवासी महोत्सव पर ये रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति है प्रभु शरण की, वाचन और सहयोग बसंत कुमार का।
1: मैं बसंत कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूँ और झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के मोराबादी के प्रांगण में, जहाँ पर 9 और 10 अगस्त को झारखंड सरकार की तरफ से आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, पर ढेर सारे पंडाल लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग तरह के विभिन्न कार्यक्रम और ऐसे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग अपने फूड स्टॉल और अलग अलग चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं। खान पकवान तो है ही यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे वाद्य यंत्र भी यहाँ पर हैं, अलग अलग चीजों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम रितिका लिंडा है।
1: और आप कहाँ से हैं?
2: यही रांची की ही है।
1: तो आपने जो स्टॉल लगाया है इसकी खासियत क्या है और ये क्या चीज है?
2: इसमें मड़वा, ज्वार और मक्का का बना हुआ सारा चीज है, ठेकुआ है, निमकी है और ये लखठो है और केक है।
1: तो इसको बनाने के लिए क्या विधि है?
2: इसको बनाने की यही आटा गूंद करके वही तेल में छानना है बस।
1: तो 2 दिन के इस मेले में कैसा रिस्पांस रहा, लोगों का क्या रिस्पांस?
2: अच्छा रहा, कल ज्यादा था, आज भी होगा, कल तो ज्यादा था, फर्स्ट डे था, तो आज भी आना चाहिए उम्मीद।
1: तो झारखंड आदिवासी महोत्सव जो कि हर साल हो रहा है, तो इस तरह का आयोजन जो किया गया सरकार की तरफ से, और चूंकि ये झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी दिखाता है, तो इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है?
2: हम सोचते अच्छा है, ये लोग अपने रीति रिवाज सारे खान पान को लोग भूल रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है कि लोग जान रहे, इसको पहचान रहे, खा रहे। नहीं तो आजकल के जनरेशन में बच्चे ये सब नहीं खाते, सिर्फ मैदा यही सब।
1: यानी कि पुरानी चीजें जो है अपनी, उनको भूलना नहीं है।
2: भूलना नहीं है, अभी भी याद रखना है, तो ये अच्छा तरीका है।
1: तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
2: हम लोगों से यही कहना चाहिए, इस तरह के मेले पे आयोजन हो रहा है तो आप लोग भैया स्टॉल लगाइए और ऐसे अपने पुराने जो खान पान है उसको रिप्रेजेंट कीजिए।
1: तो ये आपने सुना कि खान पान की जो संस्कृति है झारखंड की, उसके बारे में अभी बताया जा रहा था, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह के पकवान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और विभिन्न स्टॉल्स हैं। आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम राहुल दिग्गा है।
1: राहुल जी कहाँ से हैं?
3: हम लोहरदगा से।
1: लोहरदगा से आप आए हैं और ये 2 दिन का मेला था, आज अंतिम दिन है, तो क्या रिस्पांस रहा लोगों का?
3: बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, कल भी बहुत अच्छा भीड़ था हमारा, पूरा अच्छा सेट हो गया।
1: पारंपरिक जो चीजें हैं जो घर में देख रहा हूँ कि छिलका रोटी है और भी बहुत सारी चीजें आप लोग बना रहे हैं, तो लोग पसंद कर रहे हैं?
3: हाँ, बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: तो 2 दिन के मेले में क्या एक्सपीरियंस रहा और अगले साल अगर फिर से होगा तो क्या करेंगे?
3: अगले साल में चाहेंगे और अच्छा से करें रिप्रेजेंट हर चीज, फूड वगैरह जो भी रहे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, हम लोग फर्स्ट डे था इसलिए हम लोग कुछ कुछ नहीं कर पाए, पर अगला बार से हम लोग और अच्छा करेंगे।
1: तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो झारखंड के जो युवा है जो अपनी संस्कृति और इन सभी चीजों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं?
3: हाँ, छोड़ते जा रहे हैं, उन लोगों को यही कहेंगे कि आइए हम लोगों के पास, आइए ट्राई कीजिए हम लोग फूड वगैरह का, हम लोग साथ जुड़िए।
1: तो युवाओं के द्वारा भी बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं और अभी हमारे साथ में है एक कलाकार जो कि बैम्बू आर्टिस्ट है। आप अपना नाम बताइएगा जरा, कहाँ से आए हैं?
4: योगेंद्र, मेरा नाम
1: से है योगेंद्र।
4: हम अभी रामगढ़ के हैं, लेकिन ये जो है लगा हुआ स्टॉल

0: मुख्यालय ये नेतरहाट द्वारा बनाया गया है।
1: तो आप लोग इसको खुद से बनाते हैं?
0: हाँ, खुद से भी बनाते हैं।
1: तो दो दिन में क्या रिस्पांस रहा, लोगों का क्या रिस्पांस रहा?
0: काफी रिस्पांस रहा, बहुत कोई लेना चाहते हैं, पर यहाँ उतना कोई मार्जिन देता नहीं। ज्यादातर हम लोग का सेल होता है बाहर ही, अबू धाबी, दुबई, वहाँ पे जैसे ये 100 दिरहम में बिकेगा तो लगभग 1000 रुपया में। यहाँ कोई ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 रुपया देगा, 40-50 उससे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन लोग का रिस्पॉन्स ज्यादा है तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इसको।
1: झारखंड सरकार की तरफ से इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है, हर साल किया जा रहा है आदिवासी महोत्सव, तो लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और अपने कला संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर के आप जब प्रमोट कर रहे हैं विदेशों में, इसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अपने जगह, अपने राज्य, अपने देश के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे?
0: यही करना चाहेंगे जिसका ज्यादातर बैम्बू का यूज करिए, क्योंकि वो अभी अब घास के भी श्रेणी में आ गया है। इससे होता है कि प्लास्टिक हम लोग कम यूज करेंगे, बैम्बू का हर एक चीज बन रहा है अभी, आज सारा आप देख ही सकते हैं, और जितना भी है ज्वेलरी,
1: क्या चीजें अभी रखी आप?
0: बाकी सब है, बैग है, क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, पेन स्टैंड है, टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, बाकी है ज्वेलरी।
1: सरकार भी इस सब चीज को प्रमोट करने में आप लोगों की मदद कर रही है?
0: हाँ,
1: काफी। रिस्पांस कैसा रहा?
0: रिस्पांस बढ़िया है।
1: अगले साल फिर आएंगे?
0: हाँ, हर साल।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और अभी हमारे साथ में है झारखंड के जानी मानी शख्सियत पद्मश्री श्री बंधु मंसूरी हसमुख जी, जो कि हमारे झारखंड की शान है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया झारखंड सरकार की तरफ से, आप इस आयोजन को लेकर के माहौल में क्या आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है?
2: देखिए, ये जो प्रत्येक वर्ष आदिवासी महोत्सव होता है मोराबादी में, इसकी इंतजारी गाँव में बहुत है, और लोग जो नहीं आ सकते हैं, महसूस करता है इतना दूर है नहीं जा सकेंगे, वो लोग पूर्व संध्या कई दिन से मनाया भी प्रखंड वाइज। ये जैसे हमारा मांडर प्रखंड में हम अपनी आंखों से देखा है, मुड़मा जत्रा डार में कई गांवों के लोग मिले, इवन आपको बहु बाजार में भी पूर्व संध्या मनाया गया है और मुझे आमंत्रित किया गया। इस तरह से कई एक जगह रातू वगैरह में सब जगह। आप बात रही मोराबादी का, 9 तारीख को बड़ी से बड़ी भीड़ थी।
1: लोग पूरे साल इंतजार करते हैं आदिवासी महोत्सव का, और जब इसका आयोजन होता है पूरे झारखंड भर में, तो लोगों को अपनी जो संस्कृति है, जो कला है, जो खान पान है, उसको लेकर के जानने के लिए मौका मिलता है। तो इस चीज को लेकर के आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहिए?
2: मैं नौजवानों को और युवतियों को ये बोलूंगा कि सभी देश का अपना कल्चर है, अपना संस्कृति है, लेकिन आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, वो एक यूनिक है। विदेशों से जाने से पता चलता है कि हमारा कल्चरल और इनका कल्चर अंतर कितना है, इसलिए आप बचा के रखिए। आप पढ़ लिख के साहब बन जाइए, बाबू बन जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखिए। इसके लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ।
1: पूरे झारखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग आपको, आपकी आवाज की वजह से जानते हैं।
2: जानते हैं,
1: तो हम आपसे अगर रिक्वेस्ट करें कि कुछ गुनगुना सकते हैं?
2: हाँ, दो लाइन गुनगुना देते हैं, तो मैं एक नई गीत आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहले हम लोग कैसे यूनिक सलाहियत से रहे, एकजुट रहे, उसी के संबंध में 2 पंक्ति कहता हूँ।
1: जरूर।
2: आदिवासी मूल बासी सही आजो रवा रहा हसी खुशी आदि

0: दुखाया विराज नासी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत है और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अभी हम बात कर रहे थे झारखंड के जाने माने सुप्रसिद्ध पद्मश्री श्री मधु मंसूरी हसमुख जी से कि झारखंड में ये जो झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन होता है उसको लेकर के क्या विचार है और युवाओं को क्या संदेश देते हैं इसके बारे में। अपना नाम बताइए।
2: सभी का जोहार, मेरा नाम महावीर राम हुआ।
1: महावीर जी, दो दिन में क्या किए आप
2: जी? पहला दिन तो मेरा दो कंपटीशन था, तो एक फर्स्ट राउंड में मैं मोनिका मुंडू मैम के गाना में डांस किया।
1: अच्छा, और
2: अभी दूसरा दिन हो रहा है तो इसमें मैं कविता पाठ करने जा रहा हूँ, अभी मेरा सेशन नहीं हुआ है।
1: तो दो दिन के इस कार्यक्रम में पिछली बार में और अभी में क्या अच्छा लगा?
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस बार हो रहा है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और भव्य तरीका से इधर हो रहा है।
1: तो दो दिन के कार्यक्रम में आपने जो भी चीजें यहाँ पर जानी समझी अपनी

0: संस्कृति को लेकर के। तो जो भी आपको सुन रहे हैं उन युवाओं से, यूथ से, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सभी को बोलना चाहूंगा कि सभी को अपने संस्कृति से जुड़े, यहाँ झारखंड सरकार, हमारे झारखंड के ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य के भी जितने भी आदिवासी कलाकार थे उन लोग को भी यहाँ मंच दिया गया था।
0: तो आपने दो दिन में खूब एंजॉय किया?
1: जी अभी खूब एंजॉय किया और आज भी करेंगे।
0: चलिए बहुत अच्छा है, आप एंजॉय कीजिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए हैं बहुत सारे युवा साथी जो कार्यक्रम में अपनी अपनी रचनाओं को और अपने द्वारा प्रस्तुत चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में है मांदर सम्राट मनपुरन नायक जी, झारखंड में प्रसिद्ध हैं और अपनी वादन शैली से काफी प्रसिद्धि पा चुके हैं और हम इस झारखंड आदिवासी महोत्सव में आपसे मिले हैं। सर सबसे पहले जोहार।
2: जोहार जोहार।
0: और हम आपसे ये जानना चाहें कि इस बार का जो आयोजन है उसको लेकर के क्या आपके मन में है, कितना अच्छा हुआ और क्या और करना बाकी रह गया?
2: धीरे धीरे जो है ना, आज जो हमारा परंपरा शैली पहले का धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे इसे पनपते चला जा रहा है, इसका विकसित होते चला जा रहा है ना। विकसित होने के साथ साथ के यहाँ का कल्चरल, यहाँ का संस्कृति जो है सो एकदम समृद्ध हो चुका है। हमने बहुत सारे विदेशों में घूमा लेकिन यहाँ का शैली, यहाँ का नृत्य और संगीत हमको लगता ही नहीं है कि पर कहीं और किसी कंट्री में, किसी देश में होगा।
0: बिल्कुल,
2: हम लोगों ने देखा 40-40 कंट्रीज का, हमने नजदीक से देखा है।
0: आप लगातार बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं मादर की और अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो आयोजन होता है उससे सीधे तौर पे बच्चों को क्या सीख मिलती है?
2: देखिए वही हमारा आने वाला भावी समय का कर्णधार है ना। रह गई बात कि अगर उसको हम सजा कर रखेंगे, पौधा लगा दिए, उसका सेवा नहीं की है, उसको पानी नहीं पटाए, खाद नहीं दिए, तो वो तो पनपेगा नहीं। और हमारा परंपरागत संस्कृति जो है हमारा बच्चा से ही उभर करके निकलता है, जिसका हम लोग भी छोटे छोटे उस समय हमारा कला और संस्कृति का, हमारा पूर्वजों का दिया हुआ कला संस्कृति को हमने अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। और जैसे कि आज की स्थिति में देखेंगे कि जैसे मेला में आप तो देखे होंगे कम से कम काफी भीड़
0: बहुत,
2: और कोई ऐसा कंधा नहीं होगा, कोई ऐसा कंधा नहीं जिस कंधे पर वाद्य यंत्र नहीं हो।
0: बिल्कुल सभी के कंधे पे वाद्य यंत्र और यहाँ का जो गमछा है,
2: रेजे झूमते, उनका पहरावा, एक ऑर्नामेंट्स, इसका कॉस्ट्यूम्स, एक अलग पहचान। इसको रह गई बात युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, इनको कम से कम समझाना, बताना, जानकारी देना, ये हमारे पूर्वजों का, बुजुर्गों का योगदान रहेगा तो आगे बढ़ेंगे।
0: युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे?
2: युवाओं से तो हम निवेदन करना चाहेंगे, संदेश यही देना चाहेंगे कि अपना करियर को अगर बनाना है तो एजुकेशन तो खैर है ही, शिक्षा को सबसे पहले महत्व देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ का कल्चरल जो है, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संथाल हो, पचमढ़िया, कोरठा हो, कुरमाली हो, नागपुरी हो, उरांव हो, जो भी कल्चरल से, जो क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र का कल्चरल को हम कहेंगे कि लोग डेवलप कराएं और अपने सीखे और आने वाला पीढ़ियों को भी सिखाएं।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी झारखंड के छात्र हैं, युवा हैं और युवतियां हैं, वो सभी अपनी संस्कृति कला से जुड़ रहे हैं और इस तरह के आयोजन से उनको एक निखरने का, बाहर आने का मौका मिलता है। तो ये हर बार इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, जिसी तरह विकास होता रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद।
0: अभी हमारे साथ में थे झारखंड में प्रसिद्ध मांदर सम्राट के नाम से मनपुरन नायक जी और उनके विचार हमने जाने। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें हैं और ये आज का अंतिम दिन है, इसलिए आज के इस अंतिम दिवस में जो भी कार्यक्रम हो रहे थे, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने उनसे बात की, आप तक जानकारी पहुँचाई। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, अगले साल फिर से आदिवासी महोत्सव का आयोजन होगा, तब हम आपसे फिर इसी तरह मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: झारखंड आदिवासी महोत्सव पर रेडियो रिपोर्ट अभी हम सुन रहे थे, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, वाचन और सहयोग बसंत कुमार का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे आपकी पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

0: झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबको आपके ही कार्यक्रम आपकी पसंद में। तो आपकी पसंद का ये पहला खत बड़ा बॉम्बे सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी का। चक्रधरपुर गेलिया लहर से कोमल बेसरा, बासंती, सिद्ध कुमारी, पूजा और अनु। बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी और प्रतीक केशरी। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गाना लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी ने बोलों को लिखा है और जतिन ललित ने उन बोलों को सुर में पिरोया है।

जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, चावेंद्र कुमार वर्मा। आप सबों ने सुना चाहा है उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म प्यार किया तो डरना काका ये गाना। बोलो को लिखा है समीर ने और इन बोलो की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वली उल्लाह नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जातेक विरक और मिका विरक। आप सबों ने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज में फिल्म संघर्ष का ये गाना, समीर के बोल है और जतिन ललित का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गाना सुना चाहे आप सबों ने। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार राय हैप्पी रॉय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत रॉय, हीनू रांची से प्रवीण कुमार, मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से आप सब अभिजीत ग्वांडकर राही, श्रीमती सरिता ग्वांडकर, प्रिंस एकांश ग्वांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वांडकर, प्रणीता ग्वांडकर, अर्जुन ग्वांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वांडकर, सुमित ग्वांडकर और कुमारी ध्वनि ग्वांडकर परी। बोलो को लिखा है निदा फाजली ने और धुन तैयार की है उषा खन्ना ने।

0: के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। स्नेहिल नमस्कार सखियों, मैं शिल्पी आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: नाकूस से गरज है ना मतलब अजा से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तां से है। स्वीकार कीजिए सखियों मधु का भी प्यार भरा नमस्कार और स्वागत। कार्यक्रम है आपका अपना गृह लक्ष्मी।
0: सखियों, दोपहर का यह समय हम जानते हैं कि आप लोगों को भी ठीक उसी तरह से इंतजार रहता है जैसे हम दो सखियां, जैसे मधु और शिल्पी आपका इंतजार करती हैं।
1: बिल्कुल शिल्पी, क्योंकि यही तो वह समय है जब सखियां घर गृहस्थी के कामों को जरा विराम देते हुए चाय की चुस्कियों के साथ बैठती हैं हम सखियों के संग कुछ सुनने कुछ जानने के लिए।
0: सही कहा मधु तुमने कि हम महिलाओं को सुबह से उठकर कितने सारे काम करने होते हैं, है ना, खासकर माताओं को अपने बच्चों से संबंधित।
1: बिल्कुल, बच्चों को सुबह जगाने, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने, नाश्ता बनाने से लेकर वह क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है तक सभी कुछ तो माताओं को ही देखना होता है ना।
0: बिल्कुल, और यहाँ तक कि हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं, किस प्रकार के संस्कारों से वह आगे चलकर सुसज्जित हो, सब कुछ हम महिलाएं ही तो समझाते हैं अपने बच्चों को। क्यों, देखती है ना बहनों।
1: दरअसल हम माता पिता की ये ख्वाहिश होती है शिल्पी कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक श्रेष्ठ इंसान बने, और इसी की चाहत में अभिभावक अपने बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा देने और दिलवाने के लिए प्रयास रहते हैं और उन्हें अच्छे आचरण भी सिखाते हैं।
0: यहाँ एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि अच्छे आचरण के साथ ही देशभक्ति का बीज भी हम माता पिता को अपने बच्चों के मन में बचपन से ही डालना चाहिए, यानी कि शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने देश को समझ सकें और उससे प्रेम कर सकें।
1: सही कहा शिल्पी तुमने, क्योंकि राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रथम की भावना बच्चों में तभी जागेगी जब उन्हें हम शिक्षा देंगे, उन्हें बताएंगे।
0: और एक गौर करने वाली बात यह भी है यहाँ कि छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से व्यवहार और तरीके तौर तरीके ज्यादा सहजता से सीखते हैं मधु। वे लोग वही बोलना चाहते हैं जो परिवार के बड़े लोग बोल रहे होते हैं, वही करना चाहते हैं जो आप कर रहे होते हैं, और वही मूल्य अपने भीतर आत्मसात भी करते हैं जो हम आप उन्हें अपने व्यवहार अपने रहन सहन से दे रहे हैं उन्हें।
1: बिल्कुल, इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम बड़े भी अपने आचरण अपने व्यवहार और अपनी जीवन शैली को संयमित और मधुर रखें और देश सम्मान की भावना से पूर्ण रहें।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि बच्चों का प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है और प्रथम गुरु उसकी माँ। माँ अपने बच्चों को जो छोटी छोटी बातें बताती है सिखाती है, वहीं से उन बच्चों में देशभक्ति की भावना का बीजारोपण भी होना प्रारंभ हो जाता है।
1: बिल्कुल, इसके लिए बहनों जैसे कि आप उन्हें राष्ट्रीय प्रतीकों और वीरों का सम्मान करना सिखाइए, उन्हें देश के महापुरुषों के बारे में बता सकती हैं, उन्हें देश के असली नायकों के बारे में जानकारी दे, यानी कि वीर भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में आप बताकर उन्हें प्रेरणा दे सकती हैं।
0: हाँ बहनों, और इस तरह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर यानी खड़ा होना सिखाइए जब भी राष्ट्रगान बज रहा हो, साथ ही अपने तिरंगे के महत्व के साथ साथ उसको रखने तथा मोड़ने के तरीके भी आप बताइए अपने बच्चों को।
1: बिल्कुल, अपने देश का इतिहास तो बताइए ही, साथ ही दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतें जैसे कि नल खुला मत छोड़ो, बल्ब और पंखों का इस्तेमाल उसको इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दो, कचरा सड़कों पर यत्र तत्र मत फेंका करो, सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल सही ढंग से करो, इस तरह की बातें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल सखियों, इससे देश के संसाधनों की रक्षा होती है तो परोक्ष रूप से हम देश की सेवा भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, साथ ही अपने पर्व त्योहार, अपने खान पान, अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति पर भी बच्चों को गर्व करना सिखाना चाहिए, क्योंकि जड़ों से प्यार मातृभूमि का सम्मान होता है।
1: उन्हें बताइए सखियों कि रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है पर हिंद देश के निवास

0: वासी यहाँ सभी जन एक हैं, विविधताओं से भरे उस बाग की तरह जहाँ फूल तो कई किस्मों के होते हैं और अपनी सुगंधा फैला रहे होते हैं, पर बाग की मिट्टी एक ही होती है और वो है हमारे देश भारत की मिट्टी।
1: वाह, क्या बात कही मधु। सखियों, हमें अपने नौनिहालों में देशभक्ति का ऐसा बीज अंकुरित करना होगा जिसमें देश प्रेम के प्रति, उनके प्रति प्यार और जिम्मेदारी की भावना का फूल उगे और संस्कारों से शोभित कर्तव्यों के फल भी निकले। तो भाई, बहुत सारी बातें हमने की अपनी बहनों के साथ और इतनी सारी देशभक्ति की बात कर ली, तो मन में ऐसा हलचल हो रहा है मधु, क्यों ना सखियों के साथ एक ऐसा ही कुछ गीत सुने।
0: बिल्कुल।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पुनः स्वागत है सखियों कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज के सफर में आपके साथ है आपकी दो सखियां मधु और शिल्पी। तो शिल्पी, कार्यक्रम की पोटली में अब सखियों के लिए क्या लेकर आई हो?
3: अरे अरे मधु, लगता है कि हमने इतनी सारी बातें कर ली कि कुछ कहीं ना कहीं हम लोग भूल रहे हैं ना। लेकिन हमको याद है कि बहुत सारी पोटली है हमारे पास और आज है वात्सल्य प्रेम पर ढेर सारी बातें जो सखियों को कहीं ना कहीं देखना मधु, इस बात से उन्हें लाभ जरूर होगा।
2: बहनों, बचपन के खेलों को स्मरण करते ही मन जैसे वर्तमान की चौखट लांघकर सीधे उन दिनों में पहुंच जाता है। सहेलियों संग स्कूल जाना, एक साथ घर वापस आना, उसके बाद तो मानो पूरा संसार खेलों का ही था।
3: हाँ हाँ, फिर दिन भर की धमा चौकड़ी, एक दूसरे संग हंसी ठिठोली, अनगिनत खेल, यही था उन दिनों का बचपन का प्रेम। और कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। और मैं बार बार मधु इस कविता को जो लिखती हूँ, जब बच्चों पे बातें होती है कि भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जो लाइन है, ये पंक्तियाँ हैं, हम लोगों ने बचपन में इतना रटा है मधु, और इस कहीं ना कहीं इस पंक्ति में खेल का भी वर्णन है। तो मैं बच्चों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आप खेल को कभी मत भूलिए।
2: सही कहा तुमने शिल्पी, अब तो बचपन के मायने ही बदल गए हैं। सभी बच्चों के हाथों में एक ऐसा यंत्र है जिससे वो हटना ही नहीं चाहते।
3: बिल्कुल सखियों, हमारे समय में ये जादू नहीं था। जादू मतलब आप समझ गई ना, शायद इसलिए हम एक दूसरे संग घूमते फिरते थे, अपनी बातें एक दूसरे से साझा किया करते थे, क्योंकि मनोरंजन के लिए मोबाइल नहीं, हमारी सखी सहेलियां होती थी। वीडियो गेम की जगह पेड़ों पर हम झूला लगाते थे, लोकगीत के बोल भी सब सखियों के संग गुनगुनाते थे।
2: हाँ बिल्कुल, हमारी कल्पनाएं ही हमारे खिलौने थी और घर का आंगन ही हमारा खेल का मैदान। लुका छिपी, गुड्डे गुड़ियों का विवाह, टेंगा पानी, हमारा घर ही रंगमंच था और हम उसकी कलाकार। सखियों, कितना सुंदर और रोचक है ना वो यादें।
3: बहनों, याद कीजिए एक बार फिर आप अपना बचपन, वो मिट्टी से सने हाथ, कोई गुड़िया की कपड़ा सिलता था तो कोई उस पर सलमा सितारा सजाता था, हर रात जगकर शादी ब्याह हम रचाते और अपनी तोतली बोली में गीत भी गाते, शाम होते ही माँ की आवाज आती और हम डर जाते, अरे अब हो गई शादी ब्याह, अंधेरा हो चला और हम

0: बस 5 मिनट 5 मिनट कहकर इस बात को यानी माँ को टालते रहते थे।
1: सखी तुमने तो बचपन के गलियारे में ही घुमा डाला, ऐसा लगता है कि फिर वो समय आए और हम भी बच्चे बन जाएं।
0: क्यों नहीं,
1: लेकिन दुख इस बात का है कि आज के बच्चे इन खेलों में कब कैसे दूर होते चले जा रहे हैं ये पता ही नहीं चल पा रहा।
0: बिल्कुल मधु, ये सच बात है कि आज के बच्चे पढ़ाई और स्क्रीन के बीच इतने व्यस्त हो गए हैं कि मैदान तक पहुंचना, बच्चों संग मेलजोल बढ़ाना, आपसी संवाद, किसी विषय पर खुलकर बातें करना या परीक्षा पर चर्चा, इन सभी चीजों से वंचित हैं बच्चे, या यूं कहें कि वो समय की बर्बादी मानते हैं इसे। उनकी दुनिया सिमट कर रह गई है, जिसका जो दुष्प्रभाव है मधु वो आज हम साफ साफ देख रहे हैं।
1: यही कारण है सखियों कि बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं और हमारे पारंपरिक खेल धीरे धीरे बच्चों की यादों से भी दूर होते चले जा रहे हैं।
0: सच पूछिए तो बच्चे कई खेलों के नाम तक आज नहीं जानते। ऐसे खेल हैं आज भी जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्सा रस्सी, फुटबॉल, लंबी कूद, लेकिन इसके अलावा वो खेल जो हमने खेला है या देखा है जैसे कबड्डी, धप्पा, याद है मधु एक दूसरे के पीछे से आकर हम धप्पा जरूर कहा करते थे, डेंगा पानी, अट्टा गोटी, गिल्ली डंडा का प्रचलन अब अगर देखा जाए ना बहनों तो सच में गली मोहल्ले में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता।
1: कभी शाम होते ही मोहल्ले का आनंद बच्चों की आवाजों से गूंजता था, किसी की जीत की खुशी होती थी, किसी को हारने का दुख, लेकिन खेल खत्म होते ही सब दोस्त बन जाया करते थे।
0: बिल्कुल मधु, ये बात तुमने जो कही सच है कि हम सखियां भी खेलते थे और कहीं ना कहीं हम लोग कबड्डी खेलते थे या दौड़ा धुपी खेलते थे, थोड़े से नाराज होते थे, लेकिन खेल के मैदान तक ही वो बात होती थी। जब शाम को दोस्त के यहाँ छत पे जाते थे तो कोई गिला कोई शिकवा नहीं। सखियों यही तो खेल की खूबसूरती थी। खेल सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाता है बल्कि मन को भी एक दूसरे से मिलवाता है। वे दोस्ती, अनुशासन, सहयोग, एक दूसरे से खुलकर संवाद अब नहीं होती। बच्चे अपनी समस्या चाहे पढ़ाई की हो या करियर की, कोई भी प्रतियोगिता हो, इस विषय पर ग्रुप बनाकर पहले चर्चा किया करते थे, याद है ना।
1: बिल्कुल सखियों, असली बचपन इसी को तो कहते हैं ना बहनों। जैसे एक छोटे से बीज में भविष्य का वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही एक बच्चे में भविष्य का युवा छुपा होता है। जैसे सही जलवायु पाकर एक बीज से ही विराट वट वृक्ष बनता है, इसीलिए नन्हे से नौनिहाल को सींचना भी हम अभिभावक का दायित्व है।
0: बिल्कुल मधु, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। बच्चा एक ऐसी कली की तरह है जो हजारों संभावनाओं का प्रतीक है, इसलिए अपने बच्चों को उस उर्वर भूमि से जोड़िए, यानी कि अपने बड़े बुजुर्ग से जोड़िए, अपनी परंपराओं को दिखाइए, सिखाइए, दादा दादी की रोचक कहानियां सुनवाइए, पर्व त्योहार के महत्व को और उसके पीछे की मान्यताओं को भी आप भी समझा सकती हैं बहनों।
1: बहनों, हमारा दायित्व एक और भी है, आप अपने बचपन के खेल को उनके साथ खेल कर देखिए, इससे बच्चों को एक और भी लाभ मिलता है, जानती हैं क्या।
0: मैं जानती हूँ मधु तुम्हारा इशारा, क्योंकि आजकल के बच्चे खुलकर बात नहीं करते, मन की बात मन में ही रखते हैं, इससे माता पिता और बच्चों के बीच दूरी भी बढ़ने लगी है। सखियों, आपने भी गौर किया होगा कि इस तरह खेल के दौरान वो अपनी परेशानी को आपसे साझा करेंगे जब आप उनके साथ बच्चे बन जाइएगा।
1: इसीलिए क्यों ना सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार बच्चों के साथ बाहर निकले, यानी माता पिता भी बच्चे बने। आपके बच्चे जरूर ये सवाल करेंगे आपसे कि आपने बचपन में कौन सा खेल खेला था।
0: ये बहुत बात मायने रखता है। इसी बहाने आप बच्चों को उस खेल का महत्व बताएंगे जिससे शारीरिक, मानसिक शांति और भावनात्मक विकास होता है। शायद इन खेलों के माध्यम से पीढ़ियों के बीच की दूरी भी कम हो जाए बहनों।
1: क्योंकि बचपन केवल किताबों, परीक्षाओं और मोबाइल पर सवालों का हल ढूंढने का नाम नहीं है। बचपन तो दौड़ने, भागने, गिरकर उठने, फिर दोस्तों के साथ हंसने, मैदान में ठहाके लगाने का दौर होता है।
0: क्योंकि जैसे हमारे दिलों में बसी है वो बचपन की सहेलियां, है ना, और मधु तुम भी बसी हो वो शाम, स्कूल की गलियां, सावन के झूले, संगीत गाती सखियां, और वो शाम जब हम दोस्तों के साथ खूब खेलते थे और बचपन की खूबसूरत यादें बसी है आज भी हमारे मानस पटल पर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों, तीन रंग से सजा हुआ भारत का अभिमान है। हर भारतीय के दिल में बसता ये अपना हिंदुस्तान है।
4: बहनों, आज बात उस रंग की जो सिर्फ कपड़े पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में बसता है। आज बात उस ध्वज की जिसे देखते ही सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
3: वो है हमारा राष्ट्रध्वज। यानी हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की, जिसे हम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक बहनों मनाएंगे। और इस अभियान की शुरुआत 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी।
4: बहनों, हर घर तिरंगा इस अभियान का उद्देश्य ही लोगों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और

0: देश के प्रति जुड़ाव की भावना को मजबूत बनाए रखना है। साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल किसी खास दिन की भावना नहीं, बल्कि हर एक दिन अपने देश के प्रति जिम्मेवारी निभाने का नाम है।
1: हर घर तिरंगा, केवल घर की छत पर तिरंगा लगाने की बात नहीं, यह एक भावना है बहनों, समर्पण है देश के लिए, इसलिए हम अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे जरूर, है ना, साथ ही उसके सम्मान का भी पूरा पूरा ख्याल रखेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा शिल्पी तुमने, देशभक्ति केवल तिरंगा फैलाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अपने कार्य को ईमानदारी से, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करेंगे, झंडा को सम्मान पूर्वक रखेंगे, आसपास भी साफ सफाई तथा परिसर में लगे पेड़ पौधों की रक्षा करना भी कर्तव्य है हमारा।
1: इसलिए हर घर तिरंगा सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि देश से जुड़ने, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद करने का अवसर है। इसे अपने विचारों और कर्मों में भी हम लहराएंगे।
0: सही कहा, जब आसमान में हमारा तिरंगा लहराता है तो ऐसा लगता है जैसे भारत की आत्मा मुस्कुरा रही है।
1: हाँ सखी, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारा तिरंगा केवल तीन रंगों से बना ध्वज नहीं, बल्कि इन तीन रंगों में भारत के आदर्श, संघर्ष और सपने समाये हुए हैं।
0: इसीलिए बहनों, हम सभी को मिलकर इस अभियान को सफल बनाना है और हर घर की छत पर तिरंगा फहराना है।
1: साथ ही देश प्रेम की प्रबल धारा में अब हर मन को बहना होगा। हम भी देशभक्ति की धार में बह चले और यह देशभक्ति गीत समर्पित करते हैं हम अपने देश को, उस महान सपूत को जिन्होंने झोली में उपहार स्वरूप आजादी को प्रदान किया।

0: अब स्टूडियो की घड़ी का इशारा हो गया है सखी कि हम भी कार्यक्रम को अब समाप्त करें।
1: बिल्कुल मधु,
0: आज की कार्यक्रम की प्रस्तुति बता दे सखियों गौरव कुमार पांडे की थी,
1: और कार्यक्रम के सफर में हम दो सखियां, मैं शिल्पी
0: और मैं मधु,
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

मैंने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

0: ये फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म तलाश का ये गाना। मजरूह के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

आइए सुने फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलो को। शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो।

आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मेरा साया का ये गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म असली नकली का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शालिंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: लता मंगेशकर के गायक फिल्म असली नकली के इस गाने के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: sloganeering. Minister of State for New and Renewable Energy, Sri Pradya So Naik, tried to reply to a question on offshore wind energy development, but he could not complete his reply. Amidst the uproarious scene, the chairman adjourned the house till 2 p.m. The government has said more than 10 crore 33 lakh farmer IDs have been created across the country till date. It enables the integration of direct benefit transfer schemes such as registrations under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, minimum support price based procurement, and access to credit delivery and disaster relief. In a written reply, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Ramnath Thakur, said the farmers can register for a farmer ID themselves using their mobile phone. The NDA today held a march inside the parliament premises over alleged police action against students in Jharkhand. The MPs were carrying placards alleging the opposition is avoiding discussion despite the government's assurance that Home Minister Amit Shah is ready to respond to the student protests. The march took place after the NDA parliamentary meeting Mangal Milan. Union Minister Anupriya Patel accused the opposition of deliberately disrupting the functioning of parliament. The Supreme Court today directed the Election Commission to provide details of appeals decided so far by tribunals appointed to hear pleas against voter deletions. The appeals relate to deletions made during the special intensive revision of electoral rolls in West Bengal. A bench headed by Chief Justice Suryakant took note of a plea by Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary seeking faster disposal of SIR-related appeals. The court scheduled the plea for further hearing on the 25th of August. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Rajasthan over the next 2 days. At least 9 people have been killed and dozens injured in Russian overnight attacks across Ukraine. According to regional governor Ivan Fedorov, in Zaporizhia, 6 people were killed and 19 injured. In tennis, Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek stormed into the semifinals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 413 points to 78,130, while the Nifty dipped 133 points to 24,451 when reports last came in. And with that, we end.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन और तेज करने का किया ऐलान। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्र आंदोलन पर सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी बंद। रांची समेत विभिन्न जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित। चाईबासा में 10 लाख रुपए के इनामी सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रिम्स में एनएमसी मानकों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उच्च स्तरीय बैठक में लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने देर रात घोषणा की कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन के कारण राजधानी के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम न होने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली तथा आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक राज सिन्हा ने परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई जांच की बात दोहराई।
2: और ये सारा हरकत उन लोगों ने किया बदनाम करने के लिए छात्रों को, पत्रकारों को, और जिस प्रकार से बाउंड्री तक आने दिया छात्रों को और रात के अंधेरे में घेर करके उनको पीटा, खुद हरकत करके और भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। यह कहता है सरकार की बर्बरता की कहानी, यह कहता है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है।
1: इस बीच डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भाजपा छात्रों के नाम पर केवल राजनीति कर रही है।
3: सारा मार्केट खुला है, हम तो देख के आ रहे हैं, पूरा घूम के आ रहे हैं, बांस लगा दिया है, तोड़ दे रहे हैं बांस। आज युवाओं की मांग है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, उनकी बात, उनकी जो भी मांग है हम लोग पूरा कर रहे हैं। बंदी का सर क्यों होगा, जनता नहीं चाहती है, यहाँ जनता हमारे साथ है। ये जब जब विधानसभा चलेगा तब तक ये लोग कुछ न कुछ नौटंकी करेंगे।
1: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक, रातू रोड और कोकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रहा है।
4: यही तो दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों ने इनको वोट देकर के इनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, नौकरियां दे नहीं पाए, लेकिन एक दिन में चार चार बार लठिया बरसाने का काम किया, पानी के फहवारे छोड़ने का काम किया, कह के बच्चे लापता हैं कि जवाब सरकार को देना पड़ेगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जेपीएससी परीक्षा विवाद और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं की जायज मांगों और उनकी आवाज को दबाने के लिए दमनकारी बल प्रयोग कर रही है।
5: देखो आज पूरा झारखंड बंद है। जो दमनकारी नीति झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, इतना संवेदनहीन कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? आपने दिन में तो लाठी चार्ज किया ही, रात में लाठी चार्ज किया, सैकड़ों बच्चे घायल हैं, बेटियों को पे लाठी चार्ज किया, और बच्चों से माफी मांगने के बदले आप पुलिस प्रशासन को बधाई दे रहे हो, लेकिन ये झारखंड के बच्चे हैं, एक एक लाठी की कीमत आपको चुकानी होगी।
1: केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच कराने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी ने बताया कि पिछले एक साल में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है।
6: हमारे यहाँ गंगा जल है, उसका डिमांड बढ़ा।
7: स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। मैंने आप

0: उसमें भी बताया था कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे।
1: रांची के रिम्स में चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संस्थान में एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने के बाद एनएमसी मानकों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर और नए वार्डों के निर्माण पर विशेष चर्चा हुई। रिम्स निदेशक ने अधिकारियों को लंबित निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। श्रावण के सोमवार पर डाक विभाग ने सिंहभूम मंडल के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा दी है। चांडिल के जायदा मंदिर और बहरागोड़ा के चित्रेश्वर महादेव मंदिर में विशेष स्टॉल लगाकर महज 30 रुपए में गंगोत्री का पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराया गया। वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार की निगरानी में चले इस अभियान का उद्देश्य हर आम श्रद्धालु तक आसानी से गंगाजल पहुंचाना था।
2: हमारे यहाँ गंगा जल है, उसका डिमांड बढ़ा है सावन के चलते और उसको हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। 30 रुपया में लगभग 250 ml गंगा जल का बोतल है, वो सेल कर रहे हैं। ऑफिस में सेल करने के अलावा शिवालय है वहाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इसका डिमांड को फुलफिल किया जा सके।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की कमी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 431 अंक फिसलकर 78,111 पर और निफ्टी 135 अंक गिरकर 24,449 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने संताल परगना के देवघर सहित 5 जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। अगले 1 से 3 घंटों में देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ भागों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन और तेज करने का किया ऐलान। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्र आंदोलन पर सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी बंद। रांची समेत विभिन्न जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित। चाईबासा में 10 लाख रुपए का इनामी सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रिम्स में एनएमसी मानकों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उच्च स्तरीय बैठक में लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुने उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं अनीता सेन। इनसे सुनते हैं ये बंदिश, अमीर खुसरो की लिखी हुई। बोल है मोरा बाला जो बनवा।

अभी हम सुन रहे थे अनीता सेन को। अब इसी के साथ आज का हमारा उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी समाप्त हुआ। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे मिताली सिंह और विपिंदर की गाई गजलें। तो ये पहली गजल मिताली सिंह की आवाज में।

सुगम संगीत में आज हम सुन रहे हैं भूपिंदर और मिताली सिंह की गाई गजल। आइए सुनिए भूपिंदर और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

0: Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in five districts: Shimla, Sirmaur, Kangra, Hamirpur and Mandi. A yellow alert has also been issued for four other districts: Chamba, Kullu, Solan and Bilaspur today. The department has advised people to exercise caution during adverse weather conditions and avoid unnecessary travel to vulnerable areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Rajasthan over the next 2 days. In Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek of Poland stormed into the semifinals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider in 64 minutes. The six-time Grand Slam champion will face Ukraine's ninth seed Elina Svitolina, who defeated Ekaterina Alexandrova . Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 398 points to 78,145 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. Nine people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semifinals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए

0: आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांति पूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
3: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने

0: वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम

0: विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनिए फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती का ये पहला गाना.

जया भारती का ये पहला नगमा हमने लिया था फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें थी उदित नारायण और सोनू निगम की। बोलो को लिखा था अनु मलिक ने, धुन तैयार की थी समीर।

नहीं। अनु मलिक के बोलो को एक बार फिर सुनते हैं, समीर के संगीत निर्देशन में, आवाज है सोनू निगम की और फिल्म का नाम है LOC कारगिल।

0: अभी हम सुन रहे थे फिल्म वीर जारा का ये गाना लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजुमदार की आवाज में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार मदन मोहन। और अब इसी के साथ हमारा आज का फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे के और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम करने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक, रातू रोड और कुकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही है और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रहा है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में हुए गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों के द्वारा पिछले 18 दिनों से किए जा रहे आंदोलन और झारखंड विधानसभा के घेराव पर पुलिस लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर आज साहिबगंज जिला भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय के सभी दुकानों को बंद कराया गया। राज्य व्यापारी बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए और इस गड़बड़ी में संलिप्तता को छुपाने के लिए छात्रों और मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
2: छात्रों की मांग सीबीआई जांच होती है तो जांच का आज सरकार में बैठे हुए जो रहनुमा है जिनके इशारे पर इस प्रकार का चोरी हुआ है, छात्रों का हक मारी हुआ है, नौकरियां बेची गई है, नौकरियों का नीलामी हुई है, ये इस प्रकार का नीलामी का सच सामने आएगा, इसीलिए सरकार पीछे हट रही है और सीबीआई जांच कराने से कतराती है।
1: वहीं बोकारो जिले में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग को जोदाडी मोड़ के पास जाम कर दिया। रांची में जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी दूर कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का खूंटी में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का लोहरदगा शहर में आंशिक प्रभाव देखा गया। कुछ समय के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रेलवे

0: बिल्डिंग के पास सड़क जाम कर नारेबाजी की। इधर भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का गिरिडीह में आंशिक असर देखने को मिला। सड़क पर वाहनों का परिचालन सामान्य है, ट्रेन सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। भाजपा नेताओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ा हाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पुट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी ने बताया कि पिछले एक साल में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है।
1: बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे।
0: रांची के वन्य मुख्यालय परिसर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आदिवासी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वन विभाग के लगभग 500 पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वन भवन परिसर में आदिवासी लोक जीवन और संस्कृति को दर्शाती एक विशेष प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले

0: आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
0: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
1: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
1: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
0: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
1: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
0: जी,
1: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
0: नशाखोरी से दूर रहें,
1: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
0: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
1: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
0: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
1: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
0: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
1: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
0: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
0: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में

दी गई है कि किस प्रकार यहाँ आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की जय।

0: हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरजन बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: महात्मा गांधी की
1: जय।
0: महात्मा गांधी की
1: जय।
2: भारत माता की
1: जय।
2: भारत माता की
3: कमर डार के

0: ने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता इन्हें कोरियर से भून डालू। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो,
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो,
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
2: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रोलेट एक्ट वापस लो,
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो,
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
2: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
3: मारो,
2: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
3: सत्यपाल को
4: रिहा करो,
3: डॉक्टर किचलू को
4: रिहा करो,
3: सत्यपाल को
4: रिहा करो।
1: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: ए, ए, ए, ए, गोली चलाना बंद क्यों कर दिया?

0: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: शट अप! देख, ये सबक काफी है। अब आउट।

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: पानी पानी
1: अन्ना
0: पानी
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली

0: लाकर फीड को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
1: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
2: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
3: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
4: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
5: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
6: आप भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
4: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
3: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?

0: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
1: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
0: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
1: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊँ?
0: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
1: ये कैसे होगा, मैं खेलूँ भी पहाड़ा भी सिखाऊँ?
0: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
2: वाह, क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
1: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
1: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
1: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
1: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
1: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
1: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
1: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
4: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश कोकल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी हम सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 110.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज का ये पहला गाना आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। बोलो को लिखा है इरशाद कामिल ने, धुन तैयार की है प्रीतम ने।

आइए सुनिए मोहित चौहान की आवाज में फिल्म तनुवेड्स मनु का ये गाना, राजशेखर के बोल हैं और कृष्णा का संगीत।

नुसरत पद्र के बोलो को अभी हम सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में। संजय लीला भंसाली का संगीत था और फिल्म का नाम था सांवरिया। आइए सुने फिल्म वजीर का ये गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। बोलो को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।